0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: मार मैं पाचो
1: इटी यूनियो और रेडियो पियों चुनके रे वेर क्वारो
0: पियों चुनके रे वेर क्वारो
1: बिमार मैं पाचो
0: बिमार मैं पाचो
2: इवान लंग यू बिरो टेला लोको कामु पेने
1: इटी यूनियो और रेडियो

0: तुम ये करे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचो
0: इटी विन्यो और रेडियो इटी विन्यो और रेडियो